थो रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषा समाचार जे उपेश पाखिना दिशा थौ नेपाल सम्मत चिन्छ सह पी खुद तसलागा सप्तमी अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण विधेयक 2083 दफावार सहल या नीति प्रदेशसभा स्वापदुगो समिति छोगुदु सभायम ह्यो या बैठके संस्कृति पर्यटन लिसे नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेल दफावार सहल नीति स्वापदुगो समिति छयादिस तका तयादिको प्रस्ताव या त सभा स्वीकृति बिगो ख उगो विधेयक राष्ट्रिय सभा उत्पत्ति जुगो ख बैठके प्रधानमन्त्री बालेन साय पाखे कानुन न्याय लिसे संसदीय मामला मन्त्री सोभिता गौतम नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 या साबिक व्यवस्था माकेको सम्बन्धी विधेयक 2083 निहबुवादिल एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबी नेपाल सरकार या त नि न्यागु अर्ब 300 करोड ऋण बितेको दु मिग अर्थ मन्त्रालय नेपाल ओ एडिबी दथि बिस्क निगु सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता लाचे तहको ख अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले ओ एडिबा नाय मासातो कान्दा या बोती अर्थ सचिव डाक्टर घनश्याम उपाध्याय ओ एडिबा निर्देशक आर्नो कोस्वा लाचे त्यादिको ख विशेष अदालत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण न्याय टेरामक्स न्यायको प्रकरणीय पुलामु मन्त्री मोहन बहादुर बस्ने द्याता सफाई ब्युगु दुधासा प्राधिकरण या पुलाम नाय दिगम्बर झा नाप स्वामीसित दोषी कोचीगु दु न्यायाधीश पी दिल्ली रत्न श्रेष्ठ उमेश कोइराला ओ हेमन्त रावल या इजलास वेक नाप प्राधिकरण दुज धनराज केवाली ओ टिका उप्रेतिया त दोषी कोचीगु ख समस्याग्रस्त सहकारी संस्था बचतकर्ता दाली त बिगु सरकारी अभियान कथा शिव शिखर सहकारी या ची धपी बचतकर्ता दाली त बिगु दु शिव शिखर सहकारी या निस व पी च्याम बचतकर्ता दाली त क्या खङ्गु ख आतक थो सहकारी या चिन्स व चिन नेम बचतकर्ता या दाली त क्या ढङ्गु दु युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव नेपाल ल्यामपिन त लजगा चुला केको कुत ज्याचुङको नेतनाधिको दु राष्ट्रिय सभा मिग बैठके विनियोजन विधेयक 2083 सांसद पिन्सन लोहाँदीको निहसलिस बियादिसे मन्त्री यादव वैदेशिक लजगा या त सुरक्षित व्यवस्थित व हनीको कथन देखे त सरकार ज्याइनाचुङको नेतनाधिल सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिलसेना मोबाइल फ्रिक्वेन्सी भ्यान सवारी साधन जग मखुसे छग ह्यानाचुङ प्रयोगशाला नापो जुग्ली बजेट विनियोजन यानागु नेतनादिगु दु राष्ट्रिय सभा या मिगा बैठके विनियोजन विधेयक 2083 सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन मुखापति सांसद विंसन लोनादिगु न्यस या लिस ब्यादिसे मन्त्री तिमिलसेना रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन सीमित प्राकृतिक स्रोत या रूपमा दुगु फ्रिक्वेन्सी या व्यवस्थापन अवैध दूरसञ्चार प्रणाली या त नङ्केगु एफएम स्टेसन मसिकेगु व सीमावर्ती लागा जुइगु क्रस बोर्डर फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेप नङ्के त अपुइगु नेतनादिल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता थो सरकार स्वास्थ्य सेवा फिङ्केको ज्याजो या त प्राथमिकता बिगु नेतनादिगु दु राष्ट्रिय सभा मेग बैठक विनियोजन विधेयक 2083 स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित शीर्षक लिस ब्युसे वेकला थते थैतिको ख मन्त्री मेहता सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मी अवस्था व लोगी या चाब्यात वाच्याका दुर्गम व विकट लागे विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तब्याके त बजेट व्यवस्था यानागु नेतनादिल अध्यय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेल मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षक बोलोङ्गु न्यस या लिस ब्यादिसे कला साहित्य व संस्कृति पर्यटन नाप स्वापु दैगुली सरकार सांस्कृतिक पर्यटन या त आकर्षित यागु कथ ज्याजो याकाचुङ्गु नेतनादिल मन्त्री पौडेल पोखरा व भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल या नीति महाकथ यो रुट या नीति थिति दे नाप कूटनीतिक प्रक्रिया ज्ञानाचुङ्गु दैदिल अथे बैठके भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनन थतको मन्त्रालय विशेष लिस ब्यादिल
गण्डकी सरकार खुम बालापी व सेलापे किसानपित दा नाप हङ्गुदो बागलुङ्गा गमबहादुर कुवर नवलपरासिया निर्मल भट्टराई पोखराया रमेश खनाल तनौया रमेश तिमिल्सिना या त हङ्गुख अथे स्याङ्जाया शालिग्राम अर्याल मुस्ताङ्या भूपेन्द्र सेचन या त न हङ्गुख लिपाङ्गु इले नेपाले आख बोना तपी मा पिन्छ मस्ते त माकत दुरु मतोङ्गु छगु तथ्याङ्क केना बिगुदु जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दिक्तेले यागु क्रियाशील पत्रकार नापाए अन्तर्क्रिया यहोगो तथ्याङ्क कथ खुइ छगु प्रतिशत आधारभूत शिक्षा वो नेसुङ्गु प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा बोपी मापिन समस्त मा कथ दुरु मतोङ्कु लुयावगुदु नेपाली सन् 2022 या तथ्याङ्क कथ निनिगु प्रतिशत मापिन समस्त दुरु दानी दुरु तोङ्का चुङ्गु लुयावगु ख नेपाल खुया अमेरिका एङ्का तगु पुरातात्विक महत्त्व या नास द वो पद्मपाणी लोकेश्वर या प्राचीन त्यो या त लित हगुदु पुरातत्व विभाग हिग थथे लित हयागु धागु ख यल या इबाही बही चिङ्कुगु सदिया नास द्य 2045-46 खुया यिङ्कुगु व थैतिया चिनसुङ्गु सदिया पद्मपानी लोकेश्वर विक्रमशिला महावीर थपही पिकुद खुया यिङ्कुगु ख हलि नेवा दबु नेपा दे मुक व लिबी चोसा दबु या मङ्का गोसाले नाति वज्र व शब्दको लुमुती कविता ज्याजो जुगुदु सातवाकी भवने जुगु थो ज्याजो हलि नेवा दबु नेपा दे मुक व नाय रमेश मुनिकार्य सभानाय सु जुगुखा ज्याजोले वरिष्ठ कवि योगेन्द्र प्रधान प्राध्यापक नर्मदेश्वर प्रधान लोककवि राजभाइ जगमी नारद ब्रजाचार्य प्रदीप रत्न साक्ये मिलन साक्ये पूर्णिमा साक्ये ओ नाति बज्रम्या नली प्रजाचार्य छेपी लिज प्रजाचार्य लिजन प्रजार पिन्छन चिनाक बोना न्याङ्कु गोख अथे अमेरिका निवासी पासा ह्योमी केशरमान ताम्रकार न चिनाक बोना न्याङ्कु गोख साङ्गीतिक ह्योबोगु उगु ज्याझोले जुजुकाजी रन्जित रिता महर्जन सरिता साई राजु महर्जन पिन्छन मेहाला दिगु ख श्रीलङ्का या पश्चिमी सहर नेगोमोम्बे छगु कारागारी जुगु लुआफुलाना निम मनुत सिगुदु झाकालाना सच्ची मनुत खापा जुगुदु निगु पुचदोथि न्यागु लुआफु या त नियन्त्रण कागुदु झाक्या चिनखुम कैदी व पेम सुरक्षाकर्मी सिगु ख भारतीय मणिपुर राज्य या उखरुल जिल्ला मिग सशस्त्र पुच या आक्रमणले निम सुरक्षाकर्मी सिगुदु आक्रमणले आफ्ना जवान पि खापा जुगुदु मणिपुर या मुख्यमन्त्री एन बिरेन सिंह आक्रमण या त कु ख्युसे मधुपिन्त बिचा हाका दिल वेक्ल आक्रमणले लादुपिन्त कारो यागु ख्याचो नप बिहा दिल थौ चाने जुगु फिफा विश्वकप कासे आप्लो धेदे बेला जुगुदु थौ धेदे बेला स्पेन पोर्चुगल या त छुगु गोल बुका क्वार्टर फाइनले थिङ्गुदु गुगु मिनेतक गोल मजुगुली सुगु मिनेत टङ्गुली निगु बेजक स्पेन गोल या त ता लागु ख मिकेल मेरुन छक गोल याना दिगु ख क्रिस्टियानो रोनाल्डो या कप्तानी दुगु पोर्चुगल आप्लो कुत यासा तपी गोल या त ताम लागु ख स्पेन चिनखुद लिपा क्वार्टर फाइनले दुहाँ उङ्गुदु सन् 2010 विश्वकप स्पेन त्याकुगु ख अथहे नकतिनी कोचागु कास्या बेल्जियम पेग गोल अमेरिका त बुका बिगुदु अमेरिका छग गोल जक या त तालागु ख क्वार्टर फाइनले बेल्जियम व स्पेन दोथी थिदे बेला जुइगु गोसादु थौ दे या पहाडी ओ हिमाली लागे छु थासे न न्याना मल कुहा वैगु वा व चपु कुहा वैगु धुकुमा यागुदु कोशी बागमती गण्डकी ओ लुम्बिनी छगुनीको थासे आपल वा वैगु धुकुमा यागुदु मधेस ओ लुम्बिनी प्रदेशिया तराई लागे छगुनीको थासे वा फे वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग थागु ख मिग ये सुइगु फुटी सङ्गु डिग्री सेल्सियस लुगु ख्वाज थौ
सुई निगु निसे सुई पेङ्गु डिग्री सेल्सियस तक थाहा उनीगु धुकमा यागदु सुते न्याता इजुया च्यागु मिनेटे लुगु सूर्य नेता इजुया छिगु मिनेटे बी नेपाल भाषे बुख कोचाला सुभे।

गोजुदुप ख्यान्तोक नाङसुङ तुकराङ क्याने जुक्टुन छोङडिल तेजन आपूर्ति लोन्पो गौरी कुमारी यादव कि बजारला चालाक त्यु गोङ तेन तेन कि तुप्ला बजारला चालाक त्यु गोङ युङमो जोप्ला ताङ चालाक त्यो युङमो डोमिजी तुप्ला बजार ङ्याम्सिप कि हो तुप सुङवाए राष्ट्रिय सभा कि आरिङ सोग्दुला सोग्मी तुई जकु टिवा कि लेन ग्याक नाङिन लोन्पो यादव कि ससिङ लोतोक ताङ सिङथोक तुई गोङ फरूप ताङ युङमो डोप गुन्छन पेट्रोलियम पदार्थ तुई गोङ उत्पादन कि न्याताङ ताङ बिचौलिया त्यो हिन्दुप सुङसुङ लोन्पो यादव कि नेपाल आयल निगम कि अटोमेटिक सिस्टम तेमा पेट्रोलियम पदार्थ तुई गोङ तेन तेन कि वाउ तङ कलिया कि नेताङलासँग यम्बुला पेट्रोलियम पदार्थ त्यो खुर्ने वाउ सुङसुङ तुकराङ क्याने कृषि तेजेन नाथुङ लोन्पो गीता चौधरी कि ताङगु पल्जोर लोकी बजेट रासायनिक छा तुसोलारङ गोन्ते रूपला कृषि बिमा गुर्सिङ लोतोक देपुतीवाला अनुदान ताङ छा ते रूपला खक्सिन पुछि नेप्यौ सुङसुङ राष्ट्रिय सभा कि आरिङ सक्दुला विनियोजन विधेयक कुर्की टोङ्गु गिरिमाला सोक्मी तुई जकु टिवा कि लेन ग्याक नाङिन लोन्पो चौधरी कि रासायनिक छा कि याम्बा थाप सोरूपला लोनखाङ कि छर्सी तेजेन ल्यारिम गोचु सुङसुङ लोन्पो चौधरी कि ससिङ लोतोक ताङ पशुजन्य उत्पादन लट्याङ्गा करोडनी डोसुङ तोङ्गु ससिङ लोतोक राका कितुप तिवाला ग्यासा सिप्चुसेक प्रोत्साहन अनुदान तिरुप ल्यारिमु जिन्क्यङ क्याउ ताङ कृषि अनुदानला ट्याङ्बु ताङ पेन्सन बोजोप सुङसुङ दिसी नङ्गोमाला राष्ट्रिय सभा कि आरिङ सक्दुला सोक्मितुई कोर नासोक्ला सुङला सु नाङवाए सोक्मितुई मधेसला उतुप थुङ्गुप सुकी कले कर्णाली कि लाम दप्योक सुकुम्बासी टरिक ताङ सुशासन कि कोरला सुङला सु नाङ्गुप सेनवाए आरिङ सक्दुला सोक्मितुई मधेस ताङ तराई सखुल्ला छुकी कले मेता जोगु कर्णालीला गाडी दप्योकला स्वर्ने कलेला स्वरूप तिवला मेन्जु क्यान तेर्गु ताङ राहत कि टरिक कि गोला सुङला सुजोगु सेनवाए तन्दा राष्ट्रिय सभा कि सक्दुला डेलो उतुप लोन्पोतुई सोक्मितुई प्रतिनिधि सभा नङ्गी जम्बुलिङ तम्जी ताङ टसम सोक्पी सोक्दु सिंहदरबारला देनवाए सोक्दुला सिग्याल लोन्पो सिसिर खनाल कि टङला ग्यालखप ग्याकार ताङ ज्ञानक कि जिगोर तेजिन कोर नासोकी कुटनीतिक कोरला छकपाला ख्यान्तोक नाङवाए लोन्पो खनाल कि खोङकी क्या नङ्गुप ग्याकार ताङ ज्ञानक जिकोर कि कोरला ख्यान्तोक नाङ्गिन एमबी सिग्याल सिचुकी कोरला छोकपी छोकमितिवाला ख्यान्तोक नाङसुङ सोक्दुला सर्वोत्पत्तिवाला सक्सु किमाच्यु सेनवा सिसि ग्याङसिङ छोकपातिवालासँग सक्सु कितुब्ला केकु सेनवाए प्रतिनिधि सभा कि लोबजुङ ठोतेन तेजिन दलेन लक्ष्य सकपाला राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक कि कोरला दफावर टोङ्गु गोसुनवाए सिंहदरबारला आरिङदेउ सक्दुला सोक्मितुई राष्ट्रिय सभा ने गिरुह जोने औ विधेयकला अपराध अनुसन्धान कि ल्याब परीक्षण प्रतिवेदन डेलो तुप ठिमखाङला तिरङ सिगेकु टडिक कितुप टोङ्गु नाङसुङ सोक्मितुई लोबजुङ न्याम्सी प्रतिवेदन ट्याङ्गा माला क्याने तेरुप डिजिटल अपराधला सङ्घ विधेयकला जोकु लाका मेलाक्पा ताङ क्योकपुलोकपु नाङसिन परीक्षण कि तुसो तेन तेन किदुप ताङ गेर्की सकुल ताङ सिग्रिल किगु टडिक सलु जोगु सुङलाप नाङसुङ टोङ्गु किरिम्बाला ख्यापा डाक्टर गोपाल चौधरी कि सेमजेन ताङ मिमाङतुई यानलाक लोबजुङ कोर कुतु कुतु गिन्दुप तपकी विधेयक लासाङ ती नाङसिन टडिक किगु टोङ्गु नाङसुङ छोकपी छोक्सो डाक्टर ओजोसी शेरसन कि क्योपोलोकपो तुई सेन्द्रिक न्याम्सिप ताङ परिसनला ठिम्की शिला यार्गे जोब्ला विधेयक कोरला ग्याछाला टोङ्गु क्याने थाक्सोत कितु ख्यान्तोक नाङसुङ युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएई सुङ्गी इद उल अदा निटोङ गेचुङ्ग्या टुक्की कप्ला सही सिक ताङ चुचिक एम्बी कैदीबन्दी तिवला बिन्दु आम माफीला एम्बी सुङ्गी थुचिसे सुङवाए सिगेल लोनखाङ कि आरिङ विज्ञप्ति चिक खेपेल्की युएई कि एम्बी कैदीबन्दी तिवला बिन्दु आम माफीला चिकुर्की एम्बु ताङ युएई पर्की तम्जी माङ ल्यामु गलुप सुङसुङ अबुधाबीला होतु एम्बी सुमसक खाङ कि युएईला उम होतु कै एम्बी कैदीबन्दी तिवला आम माफी तेर्गो सुवा ज्याक्सेमा युएई सुङ्गी ती थाक्सोत क्याउ सेनवाए माफी न्यौ एम्बी मितुई युए ई कि ठिम नङसिन लाका तिरी डुपा क्यासेमा यम्बु लोक्थोपु सेनवाए ग्यालियोङ परीक्षा बोर्ड कि जिन्क्यङ क्याउ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई निटोङ गेचु ग्याङी कि पूरक परीक्षाला लोपटुक ग्याछा टुक्चु रेङा पास गलुप सेनवाए बोर्ड कि आरिङ पूरक परीक्षा कि रिजल्ट खेपेल क्या नगिन परीक्षाला तोङ गेचु ग्या सुम सयङा ताङ निसु सुम लोपटुक सक्सु क्याउ नाङला ग्याछा टुक्चु रेङा पास गलु परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारी कि ख्यान्तोक नाङ्गुबिन असार लाकी गते ताङ बोने गते गुसेक जिङक्याङ क्याउ परीक्षाला सक्सु क्याउ लोपटुक बुमचिक ताङ तोङ सिप्चु स्या टुक सयङा ताङ दिन नाङला बुमचिक तोङ निसु गु सयचिक ताङ चुप्जिकी सक्सु क्याउ सेनवाए
टोङबा शुद्धिकरण याम्सिप छोक्पी नेपाली काङ्ग्रेसकी घोमी छोक्सो शेरबहादुर देउबाकी पुजुङ जयवीर देउबाला निमादिन किन्दाङला छोकपाला उङ्गौला पुर्जी खेपेल क्यानुवाए टोङबा शुद्धिकरण कोर्की याम्सिप किरिम्बाला तामिया टिगौ तप्की छोक्पी खोङला विभागला उङ्गौला पुर्जी खेपेल क्याउ सेनुवाए छोक्पी टोङबा शुद्धिकरण निवारण ऐन नितोङ टुचुर्या जिकी दपा सिप्चु स्याचिक नङसिन जयवीर देउबाला निमादिन किन्दाङला ललितपुरकी पुलचोकला उतुप कर्मचारी सञ्चय कोसकी केन्द्रीय ल्याखुङला उङ्गौला निर्देशन बिन्दु सेनुवाए सुङ्की निमा सैचिकी लाकी छर्सी नङसिन ज्वन्दा श्रम तेजिन रोजगार लोनखाङकी श्रम प्रशासनला डिजिटल तङ फेन्सन पोजप लाका गोजुन वाए लोनखाङकी श्रम स्वीकृति रिनु किटुप टडिक झोलामुजौ साने सुङ तेमारङ श्रम स्वीकृतिकी तन्दकला निवेदन तेर्थुपु तङ छिगेल्ला लाका किटुपला मितोङ्गु पर्ला उङ्गुप चकोलोपु न्युमोजोपला अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन अप वेबसाइट जिङक्याउ सेन वाए सुङजौ निमा सैचिकी नाङला विक्रम डोङी तोङ अपसुङा दिन सिनाङ सुर गेमकी तोङ तङ सैजी खम्सुकी कोर्ला ग्याछाला तङ तोङ छिथाम्बा तङ सैचिक तङ निसु ग्या खम्सुकी कोर्ला दोर्दुला अभिलेख टरिक्याउ सेनवाए वैदेशिक रोजगार कोर्ला वा गुनासो तोङ चिक तङ सै टुक्ताङ टुक्सुर्या सुम थाक्सत क्याउ तङ त्रिभुवन जम्बुलिङ नम्डुथाङला श्रम सहायता कक्षासङ जिङ्क्याङ क्याउ लोनखाङकी सेनवाए लोनखाङकी यम्बुलारङ लाका नेतुप ककप जब सिबिआर ग्या तङ उद्यमशीलता यर्ग्याला खक्सनपुसि रोजगार सेवा केन्द्र त्यो यर्ग्या जब तङ श्रमिक तुई ओङछा सुङ्क्योप तङ पेन्सन पोजबला लाका कि ओदु सेनवाए काठमाडौँकी गङ्गबुला ओतुप नाय बस पार्कला मिचोङगुप ताम थमानाकपु खप्तेकी दुन्ठाक्षिकी ल्यारिम गोसुन वाए कोर्सुङ मक्मी ल्याखुङ नाय बस पार्क तङ सामुदायिक सेवा केन्द्र गङ्गबुकी दाङ कोडिक्याउ ल्यारिमला मिचोङगुप लाका गेकु तङ जोन्दातिवला थमानाकपु थोकु लुक्सो तेमा सुङ्क्योप कितुपला लेन खेपेल कितुप मिकुल जाङने दि ल्यारिम गोसुइन ल्यारिमला काठमाडौँ उपत्यका कोर्सुङ मक्मी ल्याखुङ रानी पोखरीकी सो तेजिन एआइजिपी सुशील सिंह राठौरकी सुङ्क्योप ओतुप चिसोक यर्गेकी तोन्दोकला सुङ मक्मी तङ मिमाङ तुई पर्ला सिगडिल कितुप खक्सेनपु होतुप सुङसुङ जोन्दा तुई थामानाकपु थुङ्गुप लुक्सो तङ चिसोक नङ्गी लाका मेलाकपतियो न्युङमो जोप्ला दुन्ठाक्षिकी ल्यारिमकी रोक्रम उङ्गुप सुङिन एआइजिपी राठौरकी मि चोङगुप तङ थामानाकपु खप्तेकी ल्यारिमला तेरिकी सिगडिलकी गोला सुगेप नाङवाए झापा मोरङ सुनसरी महोत्तरी बारा चितवन तङ नवलपरासिला तन्दा बर्ड फ्लू नजा न्युङमो गोलुप सेनवाए दिनजा तन्दा तिङ्गी तुछोला जोङखा चुचिक्ला फेल्नु होतुप एनसिसी पशु सेवा विभागकी सेतुप नङसिन काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर तङ काभ्रेला बर्ड फ्लू नजा न्युङमो जोमाथुपु सेनवाए दिन नजा न्युङमो जोब्ला विभागकी लक्ष्यपी छकमा लग्लेन क्याने नजा फेल्नु होतुप दासा तेउला च्या चे मेन्दोक तङ चे समात्यो मेता जोब्लाका कि होतुप विभागकी सुङसेपा डाक्टर मुकुल उपाध्यायकी ख्यान्थोक नाङसुङ रेडियो नेपालले आरिङकी सेरी केकी साङ्गिर डुब्सुङ थुजिसे

इलाही तू अकेला है मगर सारा जहां तेरा, मकी तेरी मकां तेरा, ज़मीन व आसमां तेरा। शहबाज बस्तवी की आवाज़ में अभी समात फरमा रहे थे सामीन। अब माँ बाप से मुतालिक चंद अहम बातें पेश खिदमत है, समात फरमाएं। माँ बाप दुनिया का वाहिद रिश्ता होते हैं जिनका नेमुल बदल नहीं है। इंसान को अपनी जगह ये लगा हुआ दांत छोटा सा महसूस होता है, मगर जब वो दांत गिर जाता है तो दो दांतों जैसा बड़ा सा खला छोड़ जाता है, और इंसान वहाँ उंगली रख रख कर तस्दीक करता है कि हाँ वाकई एक दांत गिर गया है। कुछ रिश्ते जब पास होते हैं तो उतने अहम नहीं लगते, मगर जब चले जाते हैं तो इतना बड़ा खला छोड़ जाते हैं कि कई इंसान मिलकर भी उस खला को पुर नहीं कर सकते। उनमें से एक रिश्ता वालिदैन का है। ये जब तक पास होते हैं तो होश संभालते ही उनकी पाबंदियां जान खा जाती हैं। सिपारा पकड़ो, किताबें पकड़ो, मस्जिद जाओ, स्कूल जाओ, आज कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, सर्दियों में घिसेट कर गर्म कंबल से निकालना वगैरह वगैरह। बंदा सोचता है कि क्या उनकी ज़िंदगी में कोई काम मैं अपनी मर्ज़ी से कर भी सकूँगा या नहीं। ये बहुत अजीब ताल्लुक होता है। हर पसंद के आगे माँ बाप खड़े नज़र आते हैं। हर रंग में भंग डालने वाले खेल के सनसनी खेज लम्हात, आखिरी ओवर्स में फलाने की वेटिंग और ऐन वक्त पर माँ की ललकार, नालायक तू अभी तक मस्जिद नहीं गया। जवाब में हम कहते हैं कि अम्मी मस्जिद तो इधर ही है ना, मैं कहीं नहीं जाता, मस्जिद चला जाऊँगा, बस सिर्फ 5 बॉल बाकी हैं। मगर जब ये चले जाते हैं तो इंसान की दुनिया वीरान हो जाती है। खुशी के वक्त पहला ख्याल यही तो आता है कि अम्मी अब्बू को बता दूं कि आपका बेकार बेटा कितने काम के निकले हैं। मगर फिर झटका लगता है कि जिनको असल खुशी होनी थी वो तो चले गए। हर खुशी अपने पस मंज़र में दुख की कसक छोड़ जाती है। वालिदैन की हर वो बात और पाबंदी जिस पर हमें उस वक्त गुस्सा आता है, हकीकत में उनके खुलूस व इखलास का मजहर होता है। वो न सिर्फ हमारे नुकसान बल्कि नुकसानात के अंदेशे से सहमे सहमे से रहते हैं और हमारे मुस्तकबिल के लिए परेशान रहते हैं, मगर ये बात तब तक समझ नहीं आती जब तक हमारी अपनी औलाद नहीं हो जाती और हम भी जूते उठाकर बेटे के सर पर खड़े नहीं हो जाते। वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी कदर करें, उनके लिए मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त निकालें, क्योंकि उनका कोई नेमुल बदल नहीं है। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए, और जो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। इस मजमून को ध्यान से समझें और दूसरों को भी समझाएं। हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी मेहनत या कोशिश किसी की ज़िंदगी बदल दे। सामिन, इस अहम मजमून के बाद अब एक नात शरीफ की बारी है, सैयद अहमद रज़ा की आवाज़ में, जिसका बोल है, आपकी हो अगर मुझ पे चश्मे करम, आपकी हो अगर मुझ पे चश्मे करम, आँख मेरी खुले सामने हो हरम। आपकी हो अगर मुझ पे चश्मे करम, आँख मेरी खुले सामने हो हरम। समात फरमाएं।

लसो फ्याफुल्ला तिनी मन्जुश्रीसम्म त 2862 तालु बेलबोलाला छेपा घिचुई सेङ्गी विक्रमसम्म 2083 साल असारला घिचुई सेसोम मिरे मङ्गलबार छु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ साङ्गुरी राङ्द ढेनमुला ङा सूर्य मोक्तान काइब्लुन बालेन्द्र साहसे दान्देलो सरकार से सुशासन प्रवर्धन लाभा नोर्थुम द ज्याबसोभा रोजगारी पिनमाथे निहुलबादा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा पिनमा गेखुर गदेदा ग्रेन प्राथमिकता पिनमा खापमला विषय सुङ्क्षुपमला काइब्लुन साहसे तिनी एसियाली विकास बैङ्क एडिबी लाचो मासातो काण्ड थेन रूपताबा दुरी नेपाल सरकार थेनी एडिबी डुचुई दिङ आछाइन्से विकास ल थुम्री डिक्सी गेलाबन खापासे खबरेरी अझ डिक्सी गेलाबा सेम्मला विषय सुङ्क्षुप हिन्ना काइब्लुन साहला कागुर थेन अनुसन्धान खेन्पो दिपा दहालला अनुसार घण्टा टेलाबा काठुरी काइब्लुन साहसे खबरेरी सुशासन थेन पारदर्शी गेलासे नेपाललाई विकास थुम्री छारपो बाबारी बाङ्ला सेलमला विषय सुङ्क्षेपमला काइब्लुन साहा थेन एडिबिला चोहो मासातो से जलविद्युत थेन पर्यटन थुम नेपालला नोर्थुम द ज्याबसोबारी खाम्बा ग्रेन आधार ताबासे डिजिटलाइजेसन थेन पर्यटकीय सडक पूर्वाधारला थुम्री डेक्सी गेलाबा ताम्री काठुरीला छिपमला चोहो मासातो से नेपाली विकास थुम्री अझ रोला सेलमला विषय सुङ्क्षेपन नेपाल ल नोर्थुम्ला विकास लबारी थेन समृद्धि बाबारी एडिबी से खबरेरी रोला सिन्टी सेलमला विषय सुङ्क्षेपमला चोहो मासातो से नेपाल ल नोर्थुम द ज्याबसोबारी खाम्बा कोङबा आधार मुबा थेन ब्योन गदेसे तान्दे लामन खाब गोबाङ ल डेन्सा लक्ष्मण खबरेरी नेपाल ल विकास लबारी एडिबी से खाइमा दमन रोला सेलमला विषय नन सुङ्क्षेपमला पूर्वाधार विकास प्लोन सुनील लम्साल से खाब सोमदिङ नाङ्री बिरान जोङला ग्यालसा थेन पालिका गते दोना दोबारी खाम्बा सडक ग्याम्दा लेन सोमला सोबारी बङ्ला सेलमला विषय सुङ्क्षेपमला राष्ट्रिय सभालाई तिनी लच्छी साङ्री सांसद गते सिङ्गै प्रश्नलाई जवाब दन्सिमान ब्लोन लम्साल से हिउलक्योङरी मुबा सिङ्गल लेनला बिरान सडक ग्याम गते सोमदिङ नाङ्री लेन घिला सोसी जिन्ना लाबा दोखाङ सोसी बजेट फेबासे ल्यामान सडक ग्याम्ला चुपाल्से टेन्डर ठङ सेलमला विषय सुङ्क्षेप हिन्न सांसद प्रश्नलाई जवाब दन्सिमान ब्लोन लम्साल से सडक रि खाब दुईदा काबारी छो छो आछ्यो अर्ब घिची सिङ्गिस बजेट फेसी जिन्मा से ढुई खासिन टिपा ग्लाला ढुइदा काबारी नन चुपाल से टेन्डर लासेलमला विषय सुङ्क्षेप मला चुरानु लसी सानाम रिथेन पर्यावरण ब्लोन गीता चौधरी से खाब नोर्दिङला बजेट रासायनिक सार भोलाबारी सानाम बिमा सानाम बन्द पिनमान खाबा अनुदान थिएन।

0: प्राङ्गणिक सार उत्पादन नभरी फेसी जिनमा मुला विषय संक्षेप मुला राष्ट्रिय सवारी सांसद गति सिंह प्रश्नलाई जवाब दुन शिवान ब्लोन चौधरी से रासायनिक सारलाई विकल्प रि ब्लोनखाङ से सानम बोन तोबा योजना थिएन गे खुर्सोसे गेला बन खाप मुला विषय संक्षेप मुला ब्लोन चौधरी से रासायनिक सार ग्लोबरी लामान टङ टाङ्गा खर्च लगा लप्ता बन खापा थिएन दिङनुन नाङसे चु खर्च लिए बन खापासे स्यान विकल्प सोबारी आखाम दे दोना सानम थुम द जाब सोबारी खामसेला आरे विषय संक्षेप मुला सवारी तिम्लोन सुधन गुरुङ से युल्डी शान्ति थिएन सुव्यवस्था कायम लाभरी दिम प्रशासन द कोङ्गा सोसे शान्ति सुशासन थिएन समृद्धिलाई आधार गर्दै सोसेला मलाई विषय संक्षेप मलाई चुरानुलासी उद्योग वाणिज्य थिएन आपूर्ति ब्लोन गौरी कुमारी यादव से उत्पादन उत्पादक तो थिएन गे पिनमारी सरकार से बाङ्ला पनि खाप मलाई विषय संक्षेप मलाई राष्ट्रिय सभालाई चिसाङ्नी सांसद गर्दै सिक्यो प्रश्नलाई जवाब दोन शिवन ब्लोन यादव से आन्तरिक उत्पादन लिन लाभरी थिएन गे पिनमारी सरकार इमान्दारता से गेला पनि खाप मलाई विषय संक्षेप हिन्ना ब्लोन यादव से ब्लोनखाङ गर्दै डिक्सी उत्पादन लाभरी लगानी लाभरी थिएन छोङ लाभरी खाम्बा वातावरण सोचेला मलाई विषय नन् संक्षेप मलाई चुराङ्नु लासी ऊर्जा क्विनोर थिएन सिन्चाई ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठ से दान्दे बिजुली तोब विमानो लामा उत्पादन लाभन खाप मुला विषय संक्षेप मुला राष्ट्रिय सभालाई तिनी लचिसाङ्गी विनियोजन विधेयक 2083 ऊर्जा क्विनोर थिएन सिन्चाई ब्लोन खाङ थिएन सम्बन्धित सांसद गर्दै सिंह प्रश्नलाई जवाब दुन्छुपान ब्लोन श्रेष्ठ से लामन दिङाछ हिंसेला पुराण संरचना दान्देला माग थिएन गुणस्तर अनुसार ज्याब सोबारी बाङ्लाबन खाप मुला विषय संक्षेप हिन्ना चोपेमा गाछ राष्ट्रिय सभालाई सांसद गर्दै से मधेश्री क्विलाई स्रोत थिएन चपाकौडी नुन क्वि थुङमारी खाबारे खाबसे थुङमा क्विला अभाव तसी टिबा ताम्रे सरकारलाई ध्यान छेङ्न लाभ मुला सभालाई तिनी रचिसाङ्री सांसद गर्दैछ खाजी बहिनी सूचना आपिन्ना सुकुम्बासी गर्दा होल्डिङ सेन्टर ग्राम 23 सडक रि दोन लाभ विमान सुकुम्बासी गर्दा थेरङ आलाबारी माग लाभ मुला प्रतिनिधि सभालाई मुक्युल ब्रेलबा थिएन पर्यटन समिति लचिसाङ्री रोङसा ब्लोन शिशिर खनाल से खिम्सा ह्युल गदी भारत थिएन चिन कोर लाभा थिएन स्यान समसामयिक कुटनैतिक ताम गदेला फेरि समिति त जानकारी दुन्छु बमला ब्लोन खनाल से खिम्सा ह्युल गदेला कोर लामान ज्याबा ताबाला छ्याम्री नेपाल र रोङसा ठिम्ला ताम्री समितिलाई मुल्मी गदेत जानकारी दुन्छु बहिन्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग से नेपाली काङ्ग्रेसलाई गाँचालाई चोहो थिएन गाँचालाई काइब्लोन शेरबहादुर देउबाला कोला जयवीर देउबादा साता गिक नाङ्री विभागरी खबरी निर्देशन पिनमान म्याद पुर्जी थाहा भयो मलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानलाई भरि तिलाई महत्त्वपूर्ण बयान किन्दो बसे विभाग से जयवीर दा विभाग से हुँ बहिन्न चुनन ताङ्री विभाग से तिनी बुढा नीलकण्ठरी मुबा देउबाला धिम्री म्याद पुर्जी फोइप मुला विभाग से छिबा सूचना अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन 2064 अनुसार सूचना छिबा कुनु हेन्से ग्याम्ला म्यादबीमा सातकिक नाङ्री ललितपुर र पुलचोक्री मुबा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई मियो गेदिम्लिक दोखाबारी निर्देशन पिन्ब मुला विभाग से चुपिम्बा गाछा लाभा अनुसन्धानलाई ताङ्री जयवीरला आपा गाछालाई काइब्लोन शेरबहादुर देउबा थिएन आमा गाछालाई रोङसा ब्लोन आर्जु राणा धनुन बयान पिन खबरी हो सिजनमा मलाई झापा मोरङ सुनसरी महोत्तरी बारा चितवन थिएन नवलपरासी जोङरी लेबा बर्ड फ्लू ह्याम दाँदै नियन्त्रण देखा मुला बर्ड फ्लू संक्रामक ह्याम हिँड्दा छु ह्याम गिक्सारेम गोर्चुसे गिक जोङरी लेबो मुबा पशु सेवा विभागलाई अनुसार याम्बु ललितपुर भक्तपुर थिएन काभ्रे पोलाञ्चोक रिबिसाम बर्ड फ्लू द नियन्त्रण निकिम्मारी आखाम नटेप मुला छु ह्याम द नियन्त्रण लाभारी पशु क्वारेन्टाइन गेदिम्से गस्तीलासी ग्लागिक्से अर्को ग्लारी बोर्बल लाभा नागेता साइसी भिपन संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई सरकार से ईद उल अदा 2026 ला अवसर रे ग्यार्जगिक से मेन्दो गिक्चुई से गिक नेपाली कैदी बन्दिदा आम माफी पिनमा विमान नेपाल सरकार से थुजे छे पिनमा बोला रोङसा ब्लोन खाङ से तिनी गोर्गे कागुर छिसे कैदी बन्दिदा आम माफी पिनमा से नेपाल थे युएई ला ब्रेलबादा लामन कोङमा सुबारी बाङ डिक्पा बोला विषय पाङपा मुला आम माफीलाई निर्णय ब्लोनखाङसे पिनमा निर्देशन अनुसार आबुधाबी मुबा नेपाली ग्लेबोनखाङसे लाभा मोइजनलाई आधार रे निङ्गोर ह्युल युएई सरकार चाहिँ माफी पिन बहिन्न। उसिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सिक्किममा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसिई 2082 ला पूरक अर्थात् ग्रेड वृद्धि परीक्षा रि ढुचु से ब्लिथिक ढुचु से भ्रे प्रतिशत लोपबन पास तब मला बोर्ड से तिनी पूरक परीक्षालाई रिजल्ट ते बला जानकारी दुन्सिमान परीक्षा नियन्त्रक टुकर आज अधिकारी से परीक्षा रि तोङ ब्रेचु से सोम ग्यार्जा गाँसै मेन्दु गिचु से सोम अर्थात् ढुचु से ब्लिथिक ढुचु से भ्रे प्रतिशत लोपबन गते पास तब मला विषय सुङ्क्षेप हिन्न। चुनन अनुसार चुनन लाला गिक्कुन हिंसे चुनन असार लाला गिक्कुन हिंसे कुकुन धोना सेङ्बा पूरक परीक्षा रि बोकिन मारी लाख गिक तोङ ब्लिचु से डु ग्यार्जाङा से मेन्दुङ स्लोपन गते से आवेदन पिन साइनन लाख गिक तोङ निचु से कु ग्यार्जा गिक से मेन्दु चु से ब्लि लोपन गते से चेकेन बोकिन बा मबा चुनन साङ्गुर गते ला छाम्री तिनी त तामाङ साङ्गुर झिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञानवन लसुगु लसो फ्याफुल्ला।
1: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नेपाल। अबलाई हामी करिब 5:45 लोक दोहोरी गीतहरू सुनाउँदैछौ। पहिलो गीत प्रकाश दूतराज र शान्ति श्रेय परियारको स्वर, प्रकाश दूतराजको लय शब्द सिर्जनामा।

जय झासँ सुनल जाय मैथिली भाषामे समाचार। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वर्तमान सरकारके प्राथमिकता सुशासन प्रवर्धन तीव्र आर्थिक वृद्धि रोजगारी सृजना आ नागरिकके गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध करेबाक रहल बतौलनि अछि। प्रधानमन्त्री आ एशियाली विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष मतासो कांडा संग भेटवार्ता क्रम में ई धारणा रखलनि अछि। पैघ अवसर पर प्रधानमंत्री शाह सार्वजनिक लगानी के प्रभावकारिता अभिवृद्धि करबाक निजी क्षेत्र के नेतृत्व में आर्थिक वृद्धि प्रवर्धन करबाक ऊर्जा विकास के तीव्रता देबाक आ पूर्वाधार के आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपांतरण के आगू बढ़ेबा लगायत विषय में अध्यक्ष कांडा के जानकारी करौने छलथि। ओ स्थिर नीतिगत वातावरण आ सुदृढ़ संस्था सब के लगानी आकर्षित करबा सन तथा टिकाऊ आ समावेशी विकास हासिल करबाक आधार भेल विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। ओ भेंटवार्ता में एडीबी साझेदारी के थप सुदृढ़ बनेबाक विषय में विचार विमर्श केन्द्रित भेल। प्रधानमंत्री के शाह के प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दीपा दहाल आई के जानकारी दिलेन। प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दहाल के हिसाबे प्रधानमंत्री संग भेल शिष्टाचार भेंटवार्ता में एडीबी के अध्यक्ष कांडा नेपाल के प्रदान कायल जाय वाला सहयोग के निरंतरता देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। अहिना नेपाल के डिजिटल अर्थतंत्र के आर्थिक वृद्धि आ रोजगारी के नया आधार के रूप में विकास भ रहल प्रति संतोष व्यक्त करैत अध्यक्ष कांडा डिजिटल पूर्वाधार तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सुदृढ़ीकरण में एडीबी के निरंतर सहयोग रहबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलथि। गृहमंत्री सुदन गुरुंग देश के शांति सुव्यवस्था कायम करैत गृह प्रशासन के टिकाऊ शांति सुशासन आ समृद्धि के आधारक रूप में आगू बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। आई राष्ट्रीय सभा में आबय वाला आर्थिक वर्ष के विनियोजन विधेयक अंतर्गत गृह मंत्रालय के बजट तथा नीति पर सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत ओ धारणा रखलन। गृहमंत्री गुरुंग गृह प्रशासन के परंपरागत सुरक्षा एजेंसी में मात्र सीमित नहीं राख मानव अधिकार आ कानूनी राज्य के भावना हिसाबे पुरस्कृत कायल जेबाक बतौलन। ओ आब के गृह प्रशासन कागजी आश्वासन आ भाषण सँ नहीं नागरिक के प्रत्यक्ष अनुभूति करासन सुरक्षा सुशासन आ निष्पक्षता के ठोस नतीजा देत से दावी कलन। संयुक्त अरब एमिरेट सरकार द्वारा ईद अल अधा 2026 के अवसर पर 111 गोटे नेपाली कैदीबंदी के प्रदान कायल गेल शाही आम माफी प्रति नेपाल सरकार कृतज्ञता तथा प्रशंसा व्यक्त कलक अछि। परराष्ट्र मंत्रालय आई एक विज्ञप्ति जारी करैत अई आम माफी के सदाशय पूर्ण कदम के नेपाल आयुए बीच विद्यमान द्विपक्षीय संबंध में गहीर मित्रता आ हार्दिकता के अभिव्यक्ति के संग उच्च मूल्यांकन कने जनायल गेल अछि। आम माफी के निर्णय मंत्रालय के निर्देशना हिसाबे आबूधाबी स्थित नेपाली दूतावास कने अनुरोध के प्रत्युत्तर स्वरूप मित्र राष्ट्र यूएई सरकार कने अछि। माफी प्रति नेपाली नागरिक अन्य कोनो विचाराधीन कानूनी मुद्दा वा यात्रा प्रतिबंध नहीं भेल अवस्था यूएई के प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा कलाक बाद नेपाल घुड़ सकत। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय कृषि वन तथा वातावरण मंत्रालय सिंचाई पूर्वाधार कृषि उत्पादन के एकीकृत रूप में आगू बढ़ेबाक विषय में सहकार्य करत। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री विदास भक्त श्रेष्ठ आ कृषि वन तथा वातावरण मंत्री गीता चौधरी बीच आई ऊर्जा मंत्रालय में भेल भेंटवार्ता में सिंचाई उत्पादन कृषि सेवा बाजारीकरण के 21 योजना अंतर्गत आगू बढ़ायल जेबाक विषय में विचार विमर्श भेल अछि। एहि अवसर पर मंत्री श्रेष्ठ ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय किसान के खेत धरि सिंचाई सुविधा विस्तार में अधिक लगानी कर रहल चर्च करैत ओहि पश्चात आवश्यक रहल उन्नत बीया खाद प्रविधि

संकलन कैने कच्चा दूध के गुणस्तर में सुधार आल डीडीसी कच्चा दूध के गुणस्तर सुधारक लेल कड़ाई के संग मापदंड के कार्यान्वयन के बाद गुणस्तर में सुधार देखल गेल डीडीसी के महाप्रबंधक डॉक्टर शरण कुमार पांडे के हिसाबे प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशन पश्चात शंकास्पद देखल गेल दूध के खेप तत्काल हटेबाक व्यवस्था कैलक त दूध में के खरीद में फैट आ SNF के मापदंड परिमार्जन का उच्च गुणस्तर के दूध खरीद के प्राथमिकता में राखल गेल डीडीसी के चिस्यान केंद्र सब फैट आ SNF के आधार पर दूध संकलन का चलानी पठेबाक तथा आयोजना पहुंचलाक बाद प्रयोगशाला में पुनः गुणस्तर परीक्षण हेबाक व्यवस्था कैल गेल प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशन पश्चात खाद्य प्रविधि तथा गुड़ नियंत्रण विभाग अखार 15 गति दूध के नमूना परीक्षण कैला पर चिचियान केंद्र चलानी में लिखने फैट आ SNF के विवरण से कम गुणस्तर के दूध भेटल छल वही पश्चात सब चिचियान केंद्र के परीक्षण कैल गेल आ वही के बाद देखल गेल शंकास्पद विषय में से छानबीन जारी रहल महाप्रबंधक पांडे जानकारी दिलन दूध के गुणस्तर में देखल गेल कैफियत के गंभीर रूप में ले दोषी क्यों हुए कार्रवाई करबाक लेल तथा भविष्य में एहन गतिविधि नहीं दोहरा तय के लेल तत्काल सुरक्षात्मक कदम उठाव प्रधानमंत्री कार्यालय संस्था के निर्देशन देने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के प्रेस तथा अनुसंधान विज्ञ दीपा दहाल के जानकारी दिलन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE 2082 के पूरक अर्थात ग्रेड वृद्धि परीक्षा में 64.68% विद्यार्थी उत्तीर्ण भेल अछि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आई पूरक परीक्षा के नतीजा सार्वजनिक कयने जानकारी दैत परीक्षा में 83,523 गोटे अर्थात 64.68% विद्यार्थी उत्तीर्ण भेल परीक्षा नियंत्रक टूबराज अधिकारी बतौलनि यह अखाड़ एक गति से नौकत धरि संचालन भेल पूरक परीक्षा में सहभागी हेबाक लेल 146,507 गोटे परीक्षार्थी आवेदन देने छल जाय में 129,114 गोटे परीक्षार्थी मात्र सहभागी भेल ओ जानकारी देलन परीक्षार्थी राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आ परीक्षा नियंत्रण कार्यालय कक्षा 10 के वेबसाइट SMS USSD तथा IVR सेवा मार्फत नतीजा देख सकबा को बतौलन नतीजा देखबाक लेल सिंपल नंबर आ जन्ममिति के उपयोग कर ग्रेड सी डाउनलोड करबाक व्यवस्था से हो कायल गेल छे नतीजा प्रति संतुष्टि नहीं भेला पर यह अखार 25 गते से 31 गते धरि ऑनलाइन मार्फत पूर्ण योग उत्तर पुस्तिका अवलोकन तथा पुनः परीक्षण के लेल विद्यार्थी आवेदन द सकबा को जानकारी देलन भगवान शिव की आराधना उपासना का मनाल जाय वाला साइन महीना नजदीक आला पर महतरी के बर्दीवास वार्ड नंबर 5 स्थित टूटेश्वर नाथ महादेव मंदिर के सर सफाई आ सजबा कार्य शुरू भेल अछि मधेश के कैलाश कहल जाय वाला मंदिर लग पास में रहल चूरे थुमका के रहल गाछ वृक्ष सेहो विभिन्न रंग रोहन का कलात्मक रूप में सजाल जा रहल अछि सावन मेला में पहुंचे वाला श्रद्धालु के विशेष अनुभूति करे वाले साज सज्जा रंग रोहन और सर सफाई काज के वर्ष विशेष रूप में आगू बढ़ाल गेल मंदिर संरक्षण समिति जनौलक अछि सौर मास चंद्रमास गणना अनुरूप सावन भरि एतः धार्मिक मेला लगवाक परंपरा अछि मुदा एहि बेर सावन 1 गते से लऽ कऽ शुरू होवय वाला मेला सावन पूर्णिमा अर्थात भादो 12 गते धरि संचालन होयत भगवान शिव के वास स्थान कैलाश मानल जाय वाला आ टूटेश्वर नाथ मंदिर चूरे स्थित पहाड़ी थुमका में अवस्थित भेला से शिव के वास स्थान संग जुड़ कर एके देखल जायत अछि जिला प्रशासन कार्यालय परसा जिला भीतर संचालित सब सरकारी तथा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था के लक्षित वर्ग के रोगी के कार्यविधि हिसाबे अनिवार्य रूप में छूट सहूलियत उपलब्ध करेबा लेल निर्देशन देलक अछि लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2083 के हिसाबे आर्थिक रूप में विपन्न असहाय तथा व्यवहारी से कहीं कहीं स्थानीय तह से सिफारिश भेला पर नागरिक के स्वास्थ्य उपचार के क्रम में टोकल गेल छूट सहूलियत पूर्व भेटबाक चाही व्यवस्था कैलक अछि मुदा किछ अस्पताल सब एहि व्यवस्था कार्यान्वयन की नहीं कहने शिकायत प्राप्त भेलाक बाद जिला प्रशासन कार्यालय एहि संबंध में अपन इच्छा देखबैत लिखित निर्देश ने देलक अछि गृह मंत्रालय अंतर्गत शांति सुरक्षा तथा अपराध नियंत्रण शाखा के अखार 17 गति के पत्र हिसाबे प्रशासन कार्यालय जिला स्थित अस्पताल के कार्यविधि हिसाबे छूट देने नहीं देने अनुगमन का आवश्यक प्रबंध मिलावा निर्देशन देने जनायल गेल अछि आब मौसम समाचार जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मधेश आलुमनी प्रदेश के किछ भूभाग में अपेक्षा हिसाबे वर्षा होबय नहीं सकल जनौलक अछि विभाग के वरिष्ठ मौसमविद मीन कुमार आर्याल मधेश आलुमनी प्रदेश के तराई क्षेत्र में अपेक्षा हिसाबे वर्षा होबय नहीं सकल बतौलन आर्याल अखन लुमिनी प्रदेश के उत्तरी तथा सुदूर पश्चिम प्रदेश के किछ भूभाग में मध्यम वर्षा भ रहल जानकारी देलनि अछि आब खेल समाचार
फिफा विश्वकप

के राउंड ऑफ 16 अंतर्गत भेल रोमांचक प्रतिस्पर्धा में स्पेन पोर्चुगल के 1-0 गोल से पराजित करित क्वार्टर फाइनल में स्थान सुरक्षित कलक है। अमेरिका के डलास में भेल खेलक दोसर हाफ में अतिरिक्त समय में मिकेल मेरिनो निर्णायक गोल करित स्पेन के महत्वपूर्ण जीत दियोलन। जीत सहित स्पेन विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कने अछि त पोर्चुगल के उपाधि यात्रा राउंड ऑफ 16 समाप्त भेल अछि। स्पेन 16 साल के बाद विश्व कप में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कलक अछि। इससे पहले 2010 में विश्व कप चैंपियन बनल स्पेन ओहि के बाद से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश नहीं कने छल। एना फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 अंतर्गत के खेल में अमेरिका के पराजित करित बेल्जियम विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कलक अछि। अमेरिका के सिएटल स्टेडियम में संपन्न खेल में बेल्जियम उत्कृष्ट पुनरागमन करित अमेरिका के 4-1 गोल से पराजित करित विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कलक अछि। पराजित भेल अमेरिका के विश्व कप यात्रा अंतिम 16 में समाप्त भेल अछि। बेल्जियम के जीत के चार्ल्स डे केटलर 2 गोल कैलन त हांस वानकिन आ रोमेलु लुकाकू समान 1-1 गोल कैलन। खेल के शुरुआती 9 मिनट में चार्ल्स डे केटलर गोल करित बेल्जियम के पहल अग्रता दियोलन। ओहि के बाद खेल के 31 मिनट में अमेरिका के मलिक टिलमैन फ्री किक मार्फत गोल करित खेल के 1-1 बराबरी कैलन। ओहि के 2 मिनट में बेल्जियम दोसर अग्रता बनौलक। खेलक 33 मिनट में केटलर व्यक्तिगत दोसर गोल करित टोली के अग्रता दोब्बर बनौलन। खेलक 57 मिनट में वानकेन गोल करित बेल्जियम के अग्रता तिब्बर बनौलन। ओहि के बाद खेलक दोसर हाफ में अतिरिक्त समय में लुकाकू गोल कैलाक बाद बेल्जियम अमेरिका के 4-1 गोल से पराजित करित जीत हासिल कलक अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल वर्दीवास से सुन रहा मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय संसद के से आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का विनियोजन विधेयक पारित। आर्थिक वृद्धि में सहयोग पहुंचाने के लक्ष्य के साथ नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा आगामी आर्थिक वर्ष की मौद्रिक नीति सार्वजनिक। वर्तमान सरकार की प्राथमिकता सुशासन, तीव्र आर्थिक वृद्धि और रोजगारी सृजन होने के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का कथन। और बांग्लादेश के पूर्वी कॉक्स बाजार जिले स्थित रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में भूस्खलन से 9 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने विनियोजन विधेयक 2083 को बहुमत से पारित किया है। अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले द्वारा प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेश सहित प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2083 को पारित करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने बहुमत से स्वीकृत किया। इसके साथ ही संघीय संसद के दोनों सदनों से आगामी आर्थिक वर्ष का बजट पारित किया है। इससे पहले विनियोजन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान उठे प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने कहा कि सरकार के पास आर्थिक सुधार, सुशासन और आधारभूत संरचना निर्माण के लिए स्पष्ट रोड मैप है। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और अर्थ मंत्रालय की ओर से जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां, बजट और कार्यक्रम देश के दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन पर केंद्रित है। सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए उन्होंने दावा किया कि सुशासन सुधार के लिए घोषित 100 कार्यसूची में से 86.2% प्रगति हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन, भ्रष्टाचार नियंत्रण और सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है तथा कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और तनाव प्रबंधन के लिए योग, ध्यान और आरोग्य कार्यक्रमों को जारी रखा गया है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने आर्थिक विधेयक 2083 और राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2083 को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। बैठक में अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले द्वारा प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेश सहित आर्थिक विधेयक 2083 तथा राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2083 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव सभा ने स्वीकृत किया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सभा की आज हुई दूसरी बैठक ने प्रतिनिधि सभा से प्राप्त 4 विधेयकों को धारावार चर्चा के लिए संबंधित समितियों को भेज दिया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक खरीद द्वितीय संशोधन विधेयक 2083 तथा अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले द्वारा प्रस्तुत संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तृतीय संशोधन विधेयक 2083 को विस्तृत चर्चा के लिए संबंधित समिति को भेजा गया। इसी तरह भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल द्वारा प्रस्तुत सहकारी प्रथम संशोधन विधेयक 2083 तथा स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन विधेयक 2083 को भी धारावार विचार के लिए समितियों में भेजा है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 12:15 के लिए बुलाई गई है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने ऋण प्रवाह का विस्तार कर आर्थिक वृद्धि को गति देने के उद्देश्य से आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 की मौद्रिक नीति जारी की है। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर डॉ. विश्वनाथ पौडेल ने आज 60वीं मौद्रिक नीति जारी करते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि को सहयोग देने के लिए लचीली मौद्रिक नीति को निरंतरता दी गई है। गवर्नर डॉ. पौडेल ने कहा कि इस मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन से आगामी आर्थिक वर्ष में निजी क्षेत्र को ऋण प्रवाह में 11% की वृद्धि होगी तथा मुद्रास्फीति 5.5% के भीतर सीमित रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट से आर्थिक गतिविधियां तेज होगी और बाजार की अतिरिक्त तरलता का उपयोग बढ़ेगा। साथ ही प्रेषण, पर्यटन, आय और सार्वजनिक व्यय के कारण तरलता का प्रभाव बना रहने से उस पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। इसी कारण लचीली मौद्रिक नीति को जारी रखा गया है। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहके संयोजकत्व में संविधान संशोधन पर चर्चा पत्र तैयार करने के लिए गठित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट लेखन का कार्य अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। सरकार द्वारा दूसरी बार बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर कार्यदल रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री शाह को सौंपने की तैयारी के अंतिम चरण में है। हालांकि संविधान संशोधन पर चर्चा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में अंत तक शामिल रहे कुछ राजनीतिक दलों ने असहमति जताते हुए कार्यदल से अलग होने का निर्णय किया था। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
0: अब बाकी समाचार। संयुक्त

0: के भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रवक्ता सुरेश न्योपाने के अनुसार मेयर यादव के साथ गढ़ीमाई नगर पालिका के तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष कुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बाल किशोर राय तथा 32 पुतली काठमांडू स्थित भाग्यमणि कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और उसके संचालक राधे श्याम साह के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दायर किया गया है। झापा, मोरंग, सुनसरी, मोहत्तरी, बारा, चितवन और नवलपरासी जिलों में बर्ड फ्लू पर नियंत्रण पा लिया गया है। बर्ड फ्लू पक्षियों में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। हाल के दिनों में ये 11 जिलों में फैल गया था। पशु सेवा विभाग के अनुसार काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर और कावरे पलानचोक जिलों में अभी भी इस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर मुकुल उपाध्याय ने बताया कि रोग पर नियंत्रण के लिए तकनीकी टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। संक्रमण वाले क्षेत्रों के सभी पक्षियों, पक्षीजन्य उत्पादनों तथा पक्षी उत्पादन सामग्री को नष्ट कर सुरक्षित तरीके से उनका प्रबंधन किया गया है। रोग नियंत्रण अभियान के दौरान पशु क्वारंटीन कार्यालय ने कड़ी निगरानी रखते हुए गश्त की और अवैध रूप से लाए गए पक्षियों को भी नष्ट किया। विभाग ने बताया कि अब स्थिति नियंत्रण में आने के बाद पक्षियों के परिवहन पर लगी पाबंदियों में ढील दी गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी कॉक्स बाजार जिले में स्थित रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम 9 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियों के अनुसार भारी वर्षा के चलते पहाड़ी ढलानों पर बने कई अस्थायी आश्रय ढह गए, जिससे कई लोग मलबे में दब गए। बचाव दलों ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और खोज अभियान चलाकर घायलों को निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण शिविरों में भूस्खलन और जलभराव का खतरा बना हुआ है। एहतियात के तौर पर संवेदनशील इलाकों में रहने वाले हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय संसद से आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का विनियोजन विधेयक पारित। आर्थिक वृद्धि में सहयोग पहुंचाने के लक्ष्य के साथ नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा आगामी आर्थिक वर्ष की मौद्रिक नीति सार्वजनिक। वर्तमान सरकार की प्राथमिकता सुशासन, तीव्र आर्थिक वृद्धि और रोजगारी सृजन होने की प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह का कथन और बांग्लादेश के पूर्वी कॉक्स बाजार जिले स्थित रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में भूस्खलन से 9 की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: सादा खाना 100 रुपया, मटन खाना 200 रुपया। ओए, मोबाइल को डाटा पनि हामीले चलाको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
2: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
3: *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: रेडियो नेपाल नयाँ नेपालको समावेशी आवाज राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार
1: I'm sorry नमे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे प्लीज माफ कर दो
2: इट्स ओवर अब सब कुछ खत्म हो चुका है शायद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती